0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: समी चो 14 में बोदे लोटरी पर दीरो पहले ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखाई हमरो
2: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
3: आंगी समी जो लोटरी पर दियो छामताई गुदी
2: भर दी आ भर दिवा लोटरी खाली पर दिम बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनन होने खाले पनी आफै विवरण खाई मई आपिन खबै बने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आफै बने आरी
4: सतर्क सना ठगि से क्या बसेना
5: सिद्धार्थ ब्यागर क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई रेडियो आदि खोला 105.4

एसएस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा।

कार्यक्रम को क्रम में राखी यह छोटो व्यापारिक विश्राम संगे फिलहाल स्वागत कर कार्यक्रम का विशेष भाग्य में हमी आज बुधवार व्यवसाय में रहे सुमधुर खाल का भाका कार्यक्रम में स्थान दीद अगाड़ी बढ़ी रहालेजी कलिला भाका कौरा भाका झ्यावरी भाका ठाड़ भाका लगाय का भाका हामीसँग सन्तिनी भाकाहरूलाई कार्यक्रममा जोड्दै अगाडि बढ़िरहेका छौं। यति बेलाको क्रममा हामी पस्किन्छौं अर्को सुमधुर खालको भाका सोही भाकासँगै हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यहाँहरू भने हामीसँगै रहनुहोला।

0: सादर निमन्त्रण यस वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको 19 साधारण सभा एवं 9 अधिवेशन तथा निर्वाचन निम्न कार्यक्रम बमोजिम हुने भएकोले सम्पूर्ण साधारण सदस्य जीवहरू लगायत सम्बन्ध सबैमा सूचना एवं निमन्त्रणा पठाइसकिएको छ। कथम कदाचित सूचना एवं निमन्त्रणा प्राप्त नगरेको भएमा यसै सूचनालाई निमन्त्रणा मानि निम्न मिति समय र स्थानमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि सादर निमन्त्रणा गर्दछौ। मिति यही असार 12 गते शुक्रबार, समय दिनको ठिक 12:30 बजे ठिक समयमा कार्यक्रम शुरू हुनेछ। स्थान वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको बहुउद्देश्य सामुदायिक सभा हल सिटी हल। कार्यक्रमहरू समुद्घाटन समारोह 12:45 बजेदेखि, दिवा खाजाको समय 20 मिनट मात्र। बन्द सत्रको कार्यक्रमहरू बन्द सत्र सकिएपछि निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रारम्भ हुनेछ। वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ वालिङ स्याङ्जा
1: समितियों चौदह के में बोधे लोटी पर दी रो बहले ने विवरण पी भी है मुई खाता दिखे हमरो
2: खाई खाई बहु कोई लोटरी बढ़ दिलो
3: आंगी समझो लोटरी पर दी हूँ छापता ही गुरी
2: बढ़ दी आप बढ़ दी लोटरी खाले पर दिन बा सहेली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी।

एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंजा।